ये कितने खप जाएगा इसका कोई पता नहीं चलेगा। नांदी से कर बारो उदो इसके चित विच इतना पछतावा आएगा कि काश मैं ऐस हालत चपैंट तो बच जाता अगर मैं पता होंदा। महाराज जी आखदे ने अगर हुण तू सोचे कि तू कोई पुन कर लवे नाम जप लवे पाठ कर लवे कोई धर्म कर लवे तो ओदा कोई फल मिलना है, कहिंदे हुण तू कुछ भी बीज नहीं सकदा कुछ भी उगा नहीं सकदा कोई फल नहीं प्राप्त कर सकदा। इबके राहे जदों रूह एक दफा उस राह ते पै गई कहिंदे जमण नाही फिर कुछ भी जमाया नहीं जा सकता ग्रो नहीं किया जा सकता। फिर की है पछताने सिर पारो फिर अत्यंत किस्म का सिर उत्ते पछतावे का पार ही पार है पार ही पार है पार ही पार है। इबके राहे जमण नाही पछताने सिर पारो ऐ साड़ी गुरमत है ऐ गुरु बाबा जी की बाणी की तालीम है जिसनु सिख ने अपने सामने रख के जीना है अकॉर्डिंगली इस दे हिसाब दे नाल अपनी जिंदगी गुजारनी है चलानी है कि वो अपना लोक भी और अपना परलोक भी सवारे। इस दे वास्ते सानू एक कीर्तन इस करके मैं कर रहा हाँ कि साड़ी एक जो आत्मक जीवन दी जो ग्रोथ है वो बहुत ही मध्यम जी लगती है और उस दे विच बड़ी भारी जोल्ट की जरूरत है ताकि असी समझिए कि जीवन का साड़ा मकसद की है नहीं ऐसी कर दे कि उस दे कंसीक्वेंसेस की हन। गुरु महाराज जी नू इस गल दी चिंता है कंसर्न है गुरु महाराज जी नू महाराज जी नू जिथे साडे एथे शरीरक जीवन दी भी चिंता है महाराज जी नू साडे शरीर तो रहत जीवन दी भी चिंता है कि उत्ते भी इन्हां दा बुरा हाल ना होवे। आओ एक दफा सारे प्रेम नाल इस पंक्ति नू

और ओथे जाके कहते तुहाडी रूह इतनी फूका मारेगी, इतनी चीका मारेगी, इतना चिल्लाएगी, लेकिन उस चीख पुकार नु किसे ने सुनना नहीं, और वो चीख पुकार सदियां सदियां तक उचलती रहेगी, उसनु कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि महाराज जी ने वाणी इंज ही आख्या है।

उन व्यवस्था भी निराकर गौड़ी गुआरे दी सतगुरु जी ने इसरा को गुरु ग्रंथ साहब के बीच तीजा स्थान दिता है। ये भी बहुत वड्डा राग है गुरु ग्रंथ साहब के बीच गौड़ी गुआरे दी अते मारू दो राग सतगुरु जी विच बहुत वड्डे बहुत बाणी विचारण किए इन्होंने राग विच आओ ये शाम का राग है गौड़ी गुआरे दी जब वो इस शब्द नो मेरे जगदीश मिलन की बरिया चिरंकार यह देश संदेरिया सतगुरु जी ने गौड़ी गुआरे विच

सेवा प्रवान कर दुनिया भी कम बक्का जरूर जाके सूरत के लिए इस वेले का नाम लिया गुरु दरबार में विशाद की पर ये हम आप जी अमृत ने जी तन रागा ने विच गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहिब की मर्यादा अनुसार सर्वन कीता है स्वतंत्रता दे आओ अंत दे विच सर्वक माए भाई कितने गुरु चरणा बैठे हो छोरी आड़ के ही अरदास बेनती चौधरी करनी है सतगुरु दात्या की हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडे छोरिया विच अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजियां कोई रिश्ता खाज ना जाए।

एक ताल, दो ताल, हुण तीन ताल श्रवण कर लो। नहीं जी, दो ताल हो गया, हुण तीन ताल। जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई सब।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साढ़े कभी ख्याल च भी ना दे, गुरु बाबा जी साढ़े जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी की ऑब्जर्वेशन साढ़े जीवन के प्रति यह है कि जीवन की विध ना है।

क्योंकि साढ़े गुरुदेव हैं, अपने गुरुदेव नूं असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्होंने नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख तो दिता है पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत्य। सो अज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उते मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ये है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव, सानू जीना ही नहीं आना, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र को सुनो।

आप जिन याद होएगा जिस पंक्ति उते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जिन बेनती की थी सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ। वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनु जीवन जीना आंदा है उसे दी ही जीवन दी यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किथे भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधि ना है। असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बीइंग ए सिख सक्सेस नु गुरु बाबा जी चो ही समझना है ना कि गुरु साहब सक्सेस किसनु आखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज दी निगाह च सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है? वो है कि जीवन दी यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिदा है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस दे उते शब्द उचारदे हन, कहंदे हन

यारी गल आके समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किवें पूरे होंगे, मैनू सुख इस तो किवें मिलता है, यह नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किवें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच है। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आए, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोनों आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे को दोनों जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने दे वास्ते, पर दोनों जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जो पूरी नहीं होंगे तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जो मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तुम जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता, वट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इतनी डिवेलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आखदे हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान दे रोगों का इलाज कर ली, इतने वड़े वड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत वड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उन्हां दा इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आखते हो जीना नहीं आता। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। तो महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किवें नहीं जीना आता, असं तो सोचते असं बड़ी तरक्की कर गए, असं डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखदे जीना नहीं आता। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है कहते हैं

एक कबीर साहब जी का बेनती का शब्द पांच सात मिनटां विच पढ़ के समय सिर समाप्ति ते पातशाह ने मेहर कीती है जिन्हां जिन्हां ने हाजरियां भरियां हन तुहाडियां हाजरियां पातशाह लेखे लावन। कबीर साहब जी निरंकार दे बूहे अगे कुछ इस तरह की बेनती करते हैं पढ़ के समाप्ति।

पूरे जीवों में दरगाह साहेब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहेब का होवे प्रकाश पंजां दे रूप विच कलगीधर पातशाह आप आ खड़ोवे पर पर के नाम दे गुलाल रंग दियां पचकारियां मारे अपने दर खड़े प्यारियां दे कलगी धर दे हथों जिन्हां दे तन ते मन दियां चोलियां रंगियां गईयां ऐसा रंग संसार विच वेखण नहीं आया। गुरु कृपा करे ये शरीर बन जाए रंगण वाला भांडा, गुरु बख्शिश करे ये शरीर बन जाए काया बन जाए रंगण वाला भांडा, इस नाम का मजीठ रंग उबालिया जाए। काया के बर्तन में नाम का मजीठ रंग उबालिया जाए, नाम का मजीठ रंग इस भांडे के अंदर पाया जाए, ते कलगी धर पातशाह फिर करे आप बख्शिश। उदे थों किसे असी देहधारी नूं ना मनीए, उनू हाजर नाजर प्रतख अपना गुरु मनीए, क्योंकि साहिब मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मैं रहा सुन। गुरु खालसा पंथ ने सदा कलगी धर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह अंग संग है। अपने सिख तो कदे भी नहीं जाता है, उदे हिरदे की पीड़ा सब सुनदा है, उदी अवस्था नू सदा वेखदा है। एक पल भी अपने प्यारे तो कदे दूर नहीं जाता है, प्यारे नाल प्यार ही ऐसा है। पर दुर्भाग तो साड़ी वो नैन प्राप्त नहीं हुए जिदे नाल निकट वसदा प्यारा देखण विच आ गया, वो बयान अखड़ियां वो सुंदर नैन वो नैणा की सुंदर जोत नैणा दे हुंदिया भी प्राप्त नहीं हुई जिन्हां नाल कलगी धर दे हिरदे ते बैठे दे प्रतख दीदार हो जा। स्वरूप इष्ट बख्शिया सोझी दिती, दसां जामिया की आत्मक जोत गुरु ग्रंथ साहब की बख्शिश कीती, ते कह दिता है भी गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे। इस सबो कुछ बख्श दिता ते नाल सूझ भी बख्शी, इनू वेखण वाली एक अख भी है, पर यह जाचक बन के ढह के उदे दर दे उत्ते मंग ते बन के कदे कलगी धर दे दरों यह मंग नहीं मंगी। पुत्र भी मंगे, संसार दे सुख भी मंगे, धन भी मंगिया, इज्जत आबरू भी मंगी, सबो कुछ मंगिया, पर कदे इस दर दे उत्ते आके ए मंग नहीं मंगी। हे जीवन वास पातशाह, हे कलगी धर सतगुरु, जिथे अपने महान मुबारक मुखार बिंदों उचार के ए गल आखी सी प्रगट गुरां की दे गुरु ग्रंथ साहिब जीवन वास एक बख्शिश कर, ओ नेत्र भी बख्श ते जिस दे रूप विच तू बैठा प्रतख दिसवे। फिर इस महान सतगुरु की हजूरी विच कलगी धर साहिब सतगुरु पातशाह पंजां दे रूप विच आप प्रगट खरोता होवे, बन जाए ये काया दा भांडा रंगन, ते मजीठ दा टिक जाए इस दे अंदर रंग, ते लिलारी होवे गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह आप, ते फिर इहदे अंदर जो जीवन दी चोली इस मजीठ रंग दे भांडे विच रंगी जाए, ऐसा रंग संसार विच वेखण विच नहीं आया।
ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਰੰਗਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ।

0: पितर जो राम बसत है सचो नहीं पहचानो।
1: छोड़ो दुनिया
0: नौ प्रभात शब्द आये छोड़ो दुनी परिता छोड़ो दुनी परिता ए मन प्यारा।

0: होगी सुनत्यावन जेते अलख नाम करता
1: होगी सुनत्यावन जेते अलख नाम करता सुखमू
2: नाम रंजन का सत्या मन से दुख बजे देने के विचार
1: दे दे मंगा सा सगुना शोक करे संसार तोरा हजारा ए गुड़ियारा खराब बेकार ए फुंडा खाए चले अथाऊ तिना पिकाई का
0: जल तल जिया पुनिया लो आकारा का
1: नानक भगता पुख शलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती सदा आनंद रहे।

0: जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बबड़ी चढ़ पवे अंगिया नानक जिल करते करना किया सो जाने करतार सो जाने करतार सो जाने करतार
1: सच्चे सोच तलाया
2: सतगुरु ने सदा मुक्त है।

0: परियो रामदास
1: हर जियो नाम परियो रामदास हर जियो नाम परियो राम दीन दयाल कृपाल सुख सागर
2: सर्व
1: सर्व कटा
0: पर पूरी रे
1: एकत सुनत सदा है संगे
0: एकत सुनत सदा है संगे
1: मूर्ख जाने दूरी ने
0: हर बे अंत हो मित कर बरनो
1: क्या जानो
0: हो कैसो रे
1: क्या जानो
0: हो कैसो रे।

होप मध्य जो बास बस्त में मुकुरमा है जैसे छाय तैसे गी हर बसे नरंतर कटकी हो जो पाई बाहर।

0: अरबी तुर्की पारसी हो कहूं पहल विपस्त विशेष करते कहूं देश बाकी
1: कहूं राज विद्या।

आप जी दे अनंत सेवक इथे ही खिमत जजखन कीर्तन करद बाणी पढ़द बेअंत बेअंत पुलाही हो गया दर्शन वाले बेनती है आप जी चरण काफी आए हाँ बेन फुलाही हो गया फुल चुकन की बख्शिश करनी रहमत करनी माफ करनी फिर दार कर समा बख्शे दास साहब जी दे आप जी कदम बोशी करे फिर

सुख सागर पूरन परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही। अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना। ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवै न उस्तत करे। निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय।

जिस जीव आत्मा दे जीवन विच प्रभात आ गई उसने राह पा लिया, द्वेष खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा दी एक मिकता हो गई, उस दे गल विच जित दी माला पवेगी। गुरु तेग बहादुर जी दे उच्चारण कीते राग जैजावंती दे चार शब्द अखीर विच आए हन। जैजावंती नूं किसी भी संगीत ग्रंथ राग किसी राग दी बंस विच ना लिखना दर्शाउंदा है कि नवेकला राग है। अते गुरु महाराज जी ने जैजावंती नूं अखीर विच रख के नवेकली गल ही कीती है। गुरु साहबान ने राग नूं नवी नुहार, नवा मोड़ ते नवा गायन रूप दे के नवा वड्डा पसारा पा के आत्मिक ठंड प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगते हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार दी वरतों एक विशेष ढंग नाल उस दे दोवें पासे ऋषभ सुर रख के कीती जांदी है। इस दा वादी सुर ऋषभ अते समाधी पंचम है ते गौण दा समा रात दा दूजा पहर मन्निया है। सरवण करो रे मन कौन।

क्या कहिए, जैसे मस्त राम हो रहिए, जैसे मस्त राम हो रहिए, थोड़ा बोलन गुरमत पा।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आओ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए ना भाई। वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, ये तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहू भय किन्नर पिसाच कहू प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहू कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ सर